0: બરાબર 6 વાગે હિન્દીમાં સમાચાર અમારા દિલ્હી કેન્દ્ર પરથી રિલે કરાશે.
1: દેવેન્દ્ર ત્રિપાઠી. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे. विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास. इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे. वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी. श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है.
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है. उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है.
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है. राष्ट्र सेवा के प्रति मैंने प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है.
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती

राज्यों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्तारौना वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्तुओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा

0: पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज केंद्र में प्रसारण आप सांभी रहा छो। प्रस्तुत करिए विचार बिंदु। आज विचार छे अगोत्रू आयोजन पठन भावना माकड़।

जंगली मेघनाथ जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अवजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कन्या की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाथ ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ मांदरों का एक दल मेघनाथ के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। मांदरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाथ की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे दांतों से मारकर पेश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाथ का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता तो तत्काल तखत भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाथ का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

चांदीलाया हता श्री रामचरित मानस गान कलाकार सुरेश भाटकर अनि हरिहरन कार्यक्रम प्रसारण आकाशवाणी भुज केन्द्र पर करवामां आव्यु।

0: बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: कश्मीर में विसरे एनडीए घटक दल ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक उपलब्धि है श्लाघनीय एक संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत एतदनन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वान डेर लेयेन इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी जर्मनी देशस्य चांसलर फ्रेडरिक मर्स इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जेन लुंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मंत्रालयेन गत वर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचाल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु

0: 12वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार का

भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।

मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रामपुर वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्वानुभूति समाचार शीतल वैष्णव वाँचे छे। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देश सौथी लांबा समय सुधी सतत चूंटायेला प्रधानमंत्री तरीके सेवा आपवा बदल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभिनंदन आप्या छे। केन्द्रीय गृह

0: में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माही के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक

0: कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में रहते हुए दुनिया के बड़े बड़े देशों में करोड़ों के संघर्ष कर रही है। 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछले क्वार्टर को जो 21 मार्च खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार

0: उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नाथ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने है वो हमारा पहला पांच है जो हमको पैसा के लिए दे रहे हैं, जो हमें पहले से बहुत बहुत दे रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत

0: जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री

0: एक नैतिक वृद्धि को बदलने में और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिरला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का यह दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरूज जनरल मोहम्मद को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक

0: नौकरी ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
0: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं।

0: पर ये जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल है। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र।

ने उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसभा ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिन्दुस्तान लिखता है, मास्क के बिल 20% तक महंगा हुआ, जरूरत का सामान रसोई का खर्च करीब 1000 रूपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है, पत्र लिखता है इस्लामाबाद में पीओके ने निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र

0: माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मुरूप। मोबाइल टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है। खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

आकाशवाणी भूज केंद्र जे हलो करियो गाल कार्यक्रम जी अंदर पा अलग अलग विषय ते गाल कर दा होता ई अलग अलग विषय गामडे सीमणी सुधी पूजे अने छेवाडे जो मारू ई वस्तु जो लाभ गनी सके अने ई वस्तु इनके उपयोगी थी एनाय करीने ई कार्यक्रम सतत प्रयत्नशील वे तो साइबर क्राइम जी गालवे अभ्यास जी गालवे अथवा तो कोई एडे विषय ते जिन जे एक्सपर्ट थी पा इन जो मार्गदर्शन गनी सको तो पा कोशिश करता होता कि ई कार्यक्रम थी दरेक वस्तु गामडे गामडे कच्छ जे छेवाडे जे मारू सुधी पूजे आज पण एडो जेकडो विषय जी आ चर्चा अथवा तो गाल करे वारायो थोड़ो टाइम पहला ज दसमी धोरण जो रिजल्ट अचीव है आज पा गाल करियो था कच्छ जी अंदर जो को 11 आईटीआई अचेली आए इनजे प्रवेश प्रक्रिया विषय 14 मई 2026 जो जो कुछ 17 है इनका एडमिशन आईटीआई जी अंदर शुरू थे हुए हैं बाकी दो नवाई लग दी कि 10वें धोरण जो ऑनलाइन रिजल्ट आयो अगले ठीक आईटीआई जा जो को एडमिशन प्रक्रिया है इनकी शुरुआत करी देने में आवे आज ही नजीक जी आईटीआई में आई वंदा तो एडमिशन हेल्प डेस्क उपस्थित है अने इनजी अंदर संस्था जा जो कोपन कर्मचारी है ये आके एडमिशन फॉर्म पर भरी दिए था अने मार्गदर्शन पर दिए था चलो ये तो मेरे बात थी कि आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है पर मैं शुरुआत करियो कि हमें ये वस्तु आय करो तो पा नेरो तो हेवर जो जो को समय है राष्ट्रीय अने अंतरराष्ट्रीय जगह है ते पा नेरो तो इंडस्ट्री जो समय है औद्योगिक विकास औद्योगिक क्षेत्र जो समय है घनी बार एडी मल्टीनेशनल कंपनी इन ते जेन के टेक्निकल नॉलेज वे या उम्मीदवार जी बहुज वधारे जरूरियात वे थी हने पान एरो तो आज जे समय में डिग्री करता वधारे कौशल्य के मान देने में अचे तो Only qualification is not enough. You should have some kind of skills. इतने के हरे खाली पाके कोई डिग्री अच्छी बंदी, पाके कोई सर्टिफिकेट मिली बंदो, ऐंथी पाके नौकरी जड़ी बंदी एडी एडी परिस्थिति ना रही। हरे मणि के खपे थी टेक्निकल कौशल्य वाड़ी, अने टेक्निकल स्किल जन में वे एडी स्किल घराइंदा व्यक्ति जी जरूरियत है तो हाने कच्छ जी अंदर पा गाल करियो तो भूकंप उठिया है लेकिन छेले अधी दायके में घरों जो औद्योगिक विकास थियो है घरी मने इंडस्ट्रीज अना अच्छी वही है अने हजी पर बा न्यूज़पेपर में नेरियो तो घरी मने एना समाचार

टाइम घनी बड़ी अड़ी इंडस्ट्रीज आए जो को आवनार समय में कच्छ जी अंदर घणोज बड़ा इन्वेस्टमेंट करी वारी आए अने घना वड़ा औद्योगिक क्षेत्र इना विकास थे वारा है हाँ पाके विचार ये करे जो है कि जडे एडा एटली बड़े इंडस्ट्री अची रही है अने एटली बड़े इंडस्ट्री जो विकास थी रो है कच्छ जी अंदर तो खरेखर अज जो जो को युवा है जो को अज 10th 12th के है अथवा तो कॉलेज के है इनके केड़े स्किल जी जरूरत है केड़ी स्किल इनके खपदी जेती करीने ई बड़े इंडस्ट्री जी तकू जो को उभरी थींदी इन जो लाभ गनी सकते सौथी पहला पण हाल करियो तो कच्छ जी अंदर भूज गांधीधाम मांडवी अंजार मुंद्रा भचाऊ नखत्राणा रापर कोठारा रत्नाल अने पानंद्रो आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया जो प्रारंभ थई चुक्यो है कोई पण प्रकार जी अगर मूंझवण है कोई पण तालीमार्थी है विद्यार्थी है इनके दसवें में टका आया इन हाँ ई विचार करे तो कि मुके 11मो 12मो करनो के कॉलेज करनी के मुके को करनो तो सौथी पहला इनकी मार्गदर्शन लाय करीने पण आईटीआई वने जी जरूर है आई आईटीआई वंदा तो आके सीधो एडमिशन नहीं करी दे में छे एडमिशन जो फॉर्म तो ऑनलाइन है ताई साइबर कैफे में थी के आई पंजी रीते पण भरी सको ना पर मार्गदर्शन लाय करीने संस्था जी मुलाकात गणनी बहु जरूरी है हाँ पानेरो तो इमारे वस्तु जो को कच्छ जी अंदर अच्छी रही है इनसे कारण है आवनार समय में औद्योगिक विकास जो को थींदो एन थी जो को तकू उभी थींदी ई तकू के पुजी वरे लाय करी ने पण पाके स्किल सखणी खपती अरे बाके ई थी के भाई आउ तो 10मो धोरण पास पण नहीं आ आउ तो खाली 8 पास है या तो को आउ आईटीआई करी सका तो जवाब है हां दस पास लाय करीने तो घणा मने ट्रेड अवेलेबल है इन कच्छ जी अंदर पण 8 पास लाय करीने पण आजी नजीक जी आईटीआई में घणा मने ट्रेड होंदा कि जेन जी अंदर आई एडमिशन गनी सको था अने 8 पास कुठिया पण आई इंडस्ट्री में जोड़ाए जो लाभ गनी सको था मैं सौथी पहला पण गाल करियो एडे विद्यार्थी जी के जेन के 10मो धोरण में भले सारा टका आया हुए एनी जो गोल ई जाए के मुके आईटीआई में एडमिशन गनी हुए कया कया डॉक्यूमेंट गनी ना के आईटीआई होने की जरूर है तो सौथी पहला था 2010 जो मार्कशीट जो लिविंग सर्टिफिकेट ट्रायल सर्टिफिकेट जाति अंगे जो प्रमाण पत्र आवक जो दाखलो आधार कार्ड बैंक पासबुक जी एटली जेरोक्स एटली वस्तु गनी अने आके नजीक जी आईटीआई में पूजी होने की जरूर है हाँ घना तालीमार्थी विद्यार्थी एडा होंगे के जेनी के एडमिशन गणनो के न गणनो इनकी असमंजस होंगी इनकी यही होंगे कि भाई मुके आईटीआई करनी के 11 बार धोरण करना के कॉलेज करनी के को करनो डिप्लोमा करनो तो एनी के सौ पहला सौथी पहला एनी के नजीक जी आईटीआई में वनी अने जे पण ट्रेड में इंटरेस्ट है ई ट्रेड जी मुलाकात गनी जी जरूर है ई ट्रेड जी मुलाकात गनी अने आई ओडा जो को पण कर्मचारी साहेब हाजर है ई साहेब अथवा बेन के मिली अने आई पूछो कि ई ट्रेड में को को अभ्यास अछे तो एनथी को को फायदा है अने खास तो ई करे पुठिया आओ अग्या पूरो करी सका तो पा धोरण दस पास ले गाल करियो के जन्या एकरे वर्ष जा कोर्स भेटा इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डीजल मैकेनिक स्टेनोग्राफर हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर एन पुठिया धोरण दस पास इन्हें बो वर्ष जो समय गाड़ो इन्हें फिटर इलेक्ट्रीशियन मोटर व्हीकल मैकेनिक रेफ्रिजरेशन मैकेनिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिक धोरण 8 पास जिन जो समय गाड़ो एकड़े वर्ष जो है इनमें स्विंग टेक्नोलॉजी वेल्डर कारपेंटर प्लम्बर टू व्हीलर ऑटो रिपेयर इनके पा जो 8 पास पण हो तो पण आईटीआई जी अंदर तक है 2 पास हो तो पण आईटीआई जी अंदर तक है अने घणी मरे वक्त थोड़ो मरे पण नेरे में आयो है कि आईटीआई जी अंदर कॉलेज करेला विद्यार्थियों पण एडमिशन गणन था कारण के अड़ो थिए तो के कॉलेज करे पूछिया पण नौकरी जी सारी तक न मिले तदे अड़ो थिए तो के कोई एकड़ी स्किल सीखी ने पा स्वरोजगार जी शुरुआत करियो के जेंथी करी ने पा पाजो व्यवसाय स्वरोजगारी पा करी सको अने एंथी पा कमाई सको कोई पण अभ्यास पा करियो तो इनने कोरो फायदा है इन कोरो नुकसान है ई पा के खबर होनी जरूरी है।

0: श्रोताओ, मैं हूँ विनेश
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
0: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे

0: सामने होता है और असफलता में छिपी होती एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है।

0: बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: अब बुलाई गए छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
0: रामधाणी कुतुबपुर तहसील हासिल जिला हिसार हरियाणा से रामधाणी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अग्नि गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
0: जी
1: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
0: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
0: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
0: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपरा मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, आप जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है?
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार। इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाया जाता है।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया के पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमृषि, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था। जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलम्बस और हर्मन कॉट्स अमेरिका पहुँचे, तब कोको यूरोप पहुँचा। वहाँ चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8000449 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारी ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT

0: एजेंसियों को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शिक्षक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल है।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनके दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माता जी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माता जी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माता जी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1945 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। यह केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

नाम का एक शोध छात्र पौंडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहाँ उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को रामकृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र रामकृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? और क्या है भला राम कृपा?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यवहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा, कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया
0: जी।
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब वो विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा। शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुभाष जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है
0: जी।
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है
0: जी।
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी
0: जी।
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुभाष जी।
1: सुनो राम कृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिली जुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हैं। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है
0: जी।
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होते जा रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। पर हाँ सुमित जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं
0: जी।
1: पहली प्रणाली है समकालिक

0: डायनामिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, न कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा।
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला न होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल 6ठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, तो थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक न दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माता जी करते हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माता जी ने किया। माता जी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल।
1: और आइए सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

हो गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ, मिलकर भी।

0: झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेली नहीं, किसी के साथ। और वहाँ से आकर अपने मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहाँ।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपनी नजर अजीत
2: और विनेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: आप सांडगया का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, प्रायोजक NCERT। कार्यक्रम नु प्रसारण आकाशवाणी ना भुज केंद्र पर करवामां आव्युं। बराबर 9:30 वागे समाचार हेडलाइन्स अपाशे।

चेकिंग करायू। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत कोकमा स्थित सरकारी प्राथमिक आरोग्य केन्द्र खाते गर्भवती माताओ माटे विशेष आरोग्य तपास अने मार्गदर्शन केम्पनुं आयोजन करायू। गांधीधाममांथी 43 કરોડ 93 લાખના આંતરરાષ્ટ્રીય 4G નેટવર્કનો હોટસ્પોટ। હવે પછીના મુખ્ય સમાચાર સાંજે 5 વાગીને 10 મિનિટે અપાશે।

0: 그리고 와 미봤었네요. 빠싸노.
1: यूपीए पिन एंटरिंग फक्त पैसे मुकवा मत छे
2: आरबीआई कहे छे
1: जानकार बनो सतर्क रहो
2: गायक कलाकार किशोर कुमार फिल्म ची जवानी दीवानी

0: विकास ना जन कल्याण ना।
1: श्रोता मित्रों आप सांभ रहा छो कार्यक्रम मनोरंजन कार्यक्रम में आगे बढ़ता हवे सांभिए फिल्म जीने की राह नु गीत गायक कलाकार मोहम्मद रफी।
2: एक बंजारा गाए जी।

आकाशवाणी भुज रजू करता पामनी जो मन पसंद कार्यक्रम अच्छी फोनी हांजी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुति विष्णु घोर तकनीकल सहाय मुस्तफा रूपावाला प्रसारण आकाशवाणी भुज।

0: हेलो आकाशवाणी भुज कच्ची फोन इन 90% घनश्याम सिंह सोढ़ा जूरा कैंप थी। अच्छा जूरा कैंप किधर है बापू?
1: भुज तालुके में।
0: अच्छा भुज तालुके में जूरा कैंप गांव में जगह घनश्याम सिंह सोढ़ा कॉल कर रहा है। जी घनश्याम सिंह की हेलो खैरियत खैरियत गीत है कि खैरियत फिल्म है?
1: खैरियत गीत है ना।
0: ओके सुने नहीं मुझे मन पसंद की जो गीत अने कह रही है जो परिवार में साथ
1: है परिवार में अभी दो भाई बहन है मम्मी पापा।
0: अच्छा आकाशवाणी भुज नियमित सुना था?
1: नियमित सुना।
0: अच्छा मजा आ जाती प्रोग्राम मानिया था? अच्छा करे जो कम काज है जो घनश्याम सिंह
1: मुझे तो ऑफिस वर्क है।
0: अच्छा भले तो आज संपूर्ण परिवार ला आज मन पसंद की जो गीत प्रस्तुत है।
1: ओके
0: अच्छी जा।

0: हेलो, आकाशवाणी भोज का अच्छी फोन है ना जी? पसंद जी के बोला था?
1: मुझे नाम शक्ति सिंह है।
0: शक्ति सिंह? शक्ति सिंह भोज थी बोला था। अच्छा शक्ति सिंह, हेलो क्या हो शक्ति
1: सिंह?
0: बस बराबर, आकाशवाणी भोज सुनता नियमित? अच्छा, अरे मजा आ जाती माने तो प्रोग्राम? अच्छा, थैंक यू सो मच। अने आज कच्छी फोन ने आई फोन किया है, तो क्यों गीत सुन रहा शक्ति
1: सिंह?
0: भले आकाशवाणी पक्ष में फोन कर दो रोजा। अच्छी जगह शक्ति सिंह,
1: थैंक यू,
0: आप जाओ।

0: आकाशवाणी भोज का छी फोनी ना जी पसंद।
1: हेलो
0: हेलो आकाशवाणी भोज का छी फोनी ना जी पसंद। जय माता जी। केर बोला था कदाने बोला था। अच्छा वहाँ की पत्री थी गढ़वे कृष्णा बेन बोला था। कृष्णा बेन की आयो बराबर। कृष्णा बेन आकाशवाणी तो पहली वक्त फोन किया है कि इनकी पहला फोन किया
1: है। पहली वक्त सुनो रोज का फोन पहली वक्त करा
0: है। अच्छा रोज सुना था आने पहली वक्त फोन किया है जी। कैसा लगे तो ऐसा ना प्रोग्राम।
1: हाँ मस्त मजा आता है। सवाल जो रोज सुनो बता
0: आने करे जो कम काज करे टाइम कृष्णा बेन वहाँ की पत्री है। अच्छा घर जो काम मैंने गोई हूँ। अच्छा तो गोई मेड़ भी आकाशवाणी बहुत सुना था रोए। अच्छा तो आज क्यों गीत सुन रहे कृष्णा बेन। अरे वाह खूब सरस पसंद किया है। मैं कह रहे परिवार में अच्छा आपकी छोकरी आने पप्पा भले। तो कृष्णा बेन आज संपूर्ण परिवार ला आज मन पसंद जो गीत प्रस्तुत है।

0: आकाशवाणी पर अच्छी फोनी नाजी पसंद। हेलो किर बुलाता अच्छा मिले थे महक राज सिंह। अच्छा महक राज सिंह क्या आयो क्यों गाँव में मिली हमें आज अच्छा पर जाओ गाँव थे फोन क्या आया। अच्छा तो आकाशवाणी बहुत सुनो तो नियमित अच्छा अने मजा आ जाती अच्छा मजा आ जाती प्रोग्राम मारे होता
1: बहुत बहुत बहुत रोज।

0: अच्छा, अने कई रहे थे परिवार में बापू?
1: परिवार में मम्मी पापा भाई भाई।
0: अच्छा, अने होड़ा आजो कर दो काम में कौन जो काम कर दे?
1: तो काम में ऐसे खेती बाड़ी जो है पशु पालन जो है वो बड़े काम कर दे।
0: अच्छा भले, अने आकाशवाणी बहुत सुनते रहो जा, अने आज क्यों गीत सुन रहा?
1: क्या हुआ तेरा वादा सुन लो।
0: क्या हुआ तेरा वादा? भले तो सुना दी मेरी मनपसंद की जगह, फोन करते रहो जा।

0: हेलो आकाशवाणी बहुत कच्ची फोन ही ना जी पसंद।
1: हेलो
0: जी किर बोला था?
1: सतीश बोला था।
0: अच्छा सतीश क्या थी बोला था सतीश भाई?
1: कोई चीज बोला था।
0: अच्छा सतीश भाई क्या है यो?
1: मजा।
0: अच्छा आने आज क्यों गीत सुन रहे सतीश भाई?
1: किशोर कुमार ये इच्छा फिर भी यारो।
0: अरे बड़ा खूब सरस पसंद किया है फिर यहाँ से पूरी घर में सतीश भाई परिवार में। अच्छा हमें परिवार में क्या क्या रही?
1: वो भाई है।
0: हाँ
1: हाँ
0: अच्छा अने करो करो तो पूछ में ओके विद्यार्थी है वो
1: अरे
0: विद्यार्थी है आकाशवाणी पूछ सुनो था खूब सरस आकाशवाणी पूछ सुनवे रोजा आणि आज संपूर्ण परिवारला आज मन पसंदगी जे गीत प्रस्तुत आहे अच्छा
2: मुसाफिर

0: हेलो आकाशवाणी भुज का ची फोन इन आज
1: पसंद
0: जी आकाशवाणी भुज का ची फोन इन हाँ जी आकाशवाणी भुज का ची फोन इन आज पसंद
1: विष्णु
0: जी के बोलो था अच्छा भूपाली बहन
1: की फोन इन कार्यक्रम रेगुलर
0: सुना थी। हाँ हाँ
1: तो मुझे आज गीत की फरमाइश देनी थी
0: जी सुनाई दी मेरी मन पसंद की जो गीत
1: कच्छी में जो को कच्छ में फिल्म होती है ना लगान।
0: हाँ हाँ
1: लगान फिल्म जो को गीत सुनाई दी जगह में
0: तो मैं गीत के कोई मन पसंद गीत है जो
1: वर्षा जी सीजन अच्छा थी तो वर्षा जो गीत सुनायो
0: भाई तो सुनाई दी मेरी मन पसंद की जो गीत
1: अरे विष्णु
0: अच्छी जा
1: अच्छी जा।

0: अच्छा कहीं आया शांतिलाल भाई? अरे कब चाहते हो? तबीयत पानी जोर में? वर्जी ने दीको जीवे त्या सुधी शिव कृष्ण भगवान एवं वरदान देवी आई जी जी जी जी जी पर हाँ हाँ हाँ दर्जी जी जी जी जी जी हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अने क्यों गीत समझा आज शांतिलाल भाई
1: बोले
0: के रहे हैं परिवार में
1: भले
0: आई संपूर्ण परिवार लाजीवन प्रसाद भले मणि लगा गीत प्रस्तुत
1: अच्छी
0: जा

0: Are you आकाश वाणी बहुत अच्छी फोन है नहीं जी पसंद
1: राम राम सर
0: राम राम के बोला था
1: जी
0: जी के बोला था यानी कि नहीं बोला था
1: नलिया से बोला था दर्जी राजेश राजू दर्जी
0: अच्छा दर्जी राजेश
1: नलिया कच्छ
0: हाँ के ये राजेश भाई
1: बस एकदम आनंद मंगल मौज मजा
0: राजेश भाई पहली वक्त कॉल किए थे पंजी आकाशवाणी फोन करा था अच्छा करो ना मैंने जो हाँ परिवार में राजेश भाई
1: मुझे परिवार में मुझे छोकरा नमन नमन दर्जी श्रवण दर्जी
0: जी
1: मुझे वाइफ अलिशा दर्जी
0: राजेश भाई जी जी
1: रश्मि उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे
0: अच्छा कौन फिल्म जी गीत है
1: फिल्म तो है याद में
0: बोले मजा आई मन पसंद की जो
1: धन्यवाद
0: अच्छा जी राजेश भाई आकाशवाणी समझा ऐसा के फोन करता रहा
1: जरूर जरूर थैंक यू आभार आभार।

श्रोता मित्रों, आप सांभी रहा था कच्ची फोन इन आपने पसंद कार्यक्रम नो प्रसारण आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर थी करवा माव्यू। अत्यारे सवार ना बार थवा जे रहा छे अमारा हवे पछीना तमाम कार्यक्रम अमारा अमदावाद वडोदरा केंद्र पर थी रिले कराशे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के लिए है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वलेसियावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री

इस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चक्रवराय ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया।

खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज दोस्तों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। दोस्तों जय भारती कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं 1942 लव स्टोरीज फिल्म का गाना कुमार सानू की आवाज में।

0: लता मंगेशकर, कुमार सानू और साथियों की आवाज में दिलवाला दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये नगमा।
1: तुझे देखा तो ये जाना

0: भारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भूज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेकबालिक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों के आय की रक्षा कर रही है, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से, अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक राष्ट्रप्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में है, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने का आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धा अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसे

0: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, तो जयपुर में इस तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एंटी सिटेबुलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल दमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रिस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डिब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट है। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चक्रवर्ती ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सेना के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में शनारण कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। यह टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा

गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल

पासवान ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज एमटी मेरिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाने बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस के खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण

गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाते हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी दुर्गा और तन्वी शर्मा ने मार्जिका मंसूर को हराया।

0: coverage within an 80-kilometer radius in border areas, providing people access to a wide range of information, educational content, and entertainment programs. Addressing the gathering, Union Master Rashna said special arrangements are being developed to strengthen Akashvani and Doordarshan coverage across the country's border regions from Kashmir to Kutch, with new FM transmitters and broadcasting infrastructure being set up. UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan has congratulated Indian Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving continuously elected Prime Minister, marking a historic milestone in the country's democratic journey. In a series of social media posts, Sheikh Mohammed congratulated Prime Minister Modi on achieving the longest continuous tenure as an elected head of government in modern Indian history. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with moderate losses of 0.2%. The Sensex slipped 151 points to close at 73,833, while the Nifty dipped 53 points to settle at 23,162. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's singles quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत छह मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में बैठक। प्रधानमंत्री कहे खेडूतों को कल्याण सरकार ने पहुंचनी प्राथमिकताओं में एक सरकारी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में कितना प्रकारों पर एक्साइज ड्यूटी माफ करी। केंद्रीय मंत्री सदानंद सोनोवाल ओमान में भारतीय जहाज पर थैला मिसाइल हमला में कई भारतीय नागरिकों ने मृत्यु की पुष्टि करी। विश्व की सबसे मोटी फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप को आज रात्रि 12:30 बजे थे प्रारंभ। देश में अवकाश क्षेत्र में प्रोत्साहन अपने इन स्पेस केंद्र सरकार ने सहयोग दी। गांधीनगर में खोरज जीओडीसी खाते अत्याधुनिक अवकाश उत्पादन पार्क विकसाया। पुलिस कमिश्नर से लेने पीआई सुधीर ने अधिकारियों ने दरवेज बे कलाक फरजियत नागरिकों ने जो संभाला राज्य में पुलिस वड़ा जी एस मलिक के आदेश करो। राज्य में एक महीने में राज्यव्यापी हेलमेट जुम्बेश अंतर्गत हेलमेट नियम भंग करने 5,123 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पास थी 100,58,000 रूपये में दंड वसूलो। भारत में बने प्रथम एयरबस C-295 गुजरात में वडोदरा थी प्रथम परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूर्ण करी। भूज आरटीओ द्वारा विविध विस्तारों में चेकिंग चालू रखा से शाला शुरू करता है स्कूल वाहनों में चेकिंग 35 वाहनों में 1,26,000 नियमों उपाय।

0: क्षेत्र पुलिस उम्मीदवार आईएमबीए नजीक जाता नहीं है क्या? माछीमारी करनी गुनो छे अच्छी छे ने?
1: हाँ बापू, मने खबर छे कि पाकिस्तान आईएमबीए ओएमजी ने माछीमारी करता अपना माछीमारों नु अपहरण करी तेमने जेल में पूरी दे छे अने आपणी बोट नो उपयोग आपणा ज देश विरोधी प्रवृत्तिओ में करवामां आवे छे।
2: लोकसभा कार्यक्रम में हम सामने शो जोसना कापड़ी पास थी।

0: नमस्ते, हीअ आकाशवाणी आहे। हाणे तव्हीं नरेश गुलवाणीअ खां देश विदेश जा समाचार सिंधी में ॿुधंदा। सभ खां पहिरियों मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअ अॼु नई दिल्लीअ में नीति आयोग जे 11 गवर्निंग काउंसिल जी बैठक जी सदारत कई। सूचना विस्तार मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान जे जैसलमेर में 20 किलो वाट जे FM ट्रांसमीटर जो मुहूर्त कयो। सरकार कुछ एथेनॉल मिलाए वाले पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी माफ की। भारत में ठहल एयरबस C295 जहाज वडोदरा का पंजी पहली आजमाशी उड़ान में कामयाब नमूने मुकम्मल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की अज रात मेक्सिको शहर का शुरुआत। हर समाचार तफसीलवार बदलना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चयो आहे त जेतोणीकि दुनिया गैर यकीनी ऐं अस्थिरता जे दौर मां गुज़री रही आहे, पर भारत आत्मविश्वास ऐं मज़बूत तौर ते पके संकल्प सां विकास जी वाट ते अॻु वधो आहे। अॼु नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग जे 11 गवर्निंग काउंसिल जी बैठक जी सदारत कंदे श्री मोदीअ चयो त जीअं जीअं भारत विकसित भारत जे मक़सद सां अॻिते वधी रहियो आहे, इन ॾिस में मर्कज ऐं राज्य सरकारनि जी गॾियल ज़िमेवारी अञा बि घणी वधी वञे थी। श्री मोदीअ चयो त राज्यनि विच में सहकार, ॻाल्हि ॿोल ऐं वीचारनि जी ॾे वठि थियणु घुर्जे। हुन साहिब चयो त नीति आयोग इन में सहकार लाइ हिकु अहमियत भरियो किरदार अदा करे सघे थो, त जीअं सभिनी सूबनि ऐं मर्कज़ी ज़ेर सां प्रदेशनि विच में वीचारनि जी मुनासिब ॾे वठि थी सघे ऐं विकसित भारत जे लक्ष्य ॾांहुं वधियल कोशिशुनि खे बल मिले। श्री मोदीअ चयो त मयारी तइलीम यानी क्वालिटी एजुकेशन, हुनरी विकास ऐं नौजवाननि लाइ रोज़गार मुयसर करणु, इहे अॻियां भरण हुअणु घुर्जनि। हुन साहिब चयो त बा इख़्तियार नौजवान तरक़ी याफ़्त भारत जे सफ़र में हिकु प्रेरक शक्ति यानी ड्राइविंग फोर्स हूंदा। प्रधानमंत्रीअ चयो त औरतुनि जी अॻुवाणीअ में विकास विकसित भारत जे ख़्वाब जो आधार आहे। हुन साहिब चयो त ज़राइत ऐं स्टार्टअप खां वठी साइंस ऐं नवाचार ताईं नारी शक्ति सभिनी खेत्रनि में योगदान ॾेई रही आहे। बैठक में सभिनी राज्यनि ऐं मर्कज़ी ज़ेर सां प्रदेशनि जे मुख्यमंत्रियुनि, गवर्नरनि, नायब गवर्नरनि शिरकत कई। हिन साल जी बैठक जो मौज़ू आहे 2047 ताईं विकसित भारत लाइ समावेशी मानव विकास। गृह मंत्री अमित शाह पिण अॼु नीति आयोग जी गवर्नरिंग काउंसिलिंग जे 11 इजलास में शिरकत कई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह चयो त नीति आयोग भारत खे बुनियादी तौर ते मज़बूत करण लाइ हिकु अहम इदारो आहे। हुन साहिब चयो त आयोग मुल्क खे तरक़ीअ जे हर पहलू ऐं आलमी सतह ते मुक़ाबिलो करण लाइ तयारु करण जे हुकूमत जे नज़रिये खे लागू करे थो। हुन साहिब चयो त भारत न रुॻो हर वॾी अर्थव्यवस्था सां मुक़ाबिलो करे रहियो आहे, पर हिन खे अॻिते वधाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। घरू वज़ीर चयो त मुल्क साल 2047 ताईं हिकु तरक़ी याफ़्त भारत जे मक़सद सां वधी रहियो आहे। सूचना नशदा मंत्री अश्विनी वैष्णव अॼु जयपुर जे आकाशवाणी कैंपस में मुंतज़िम प्रोग्राम में राजस्थान जे जैसलमेर जे रामगढ़ में 20 किलो वाट जे FM ट्रांसमीटर जो वर्चुअल नमूने मुहूर्त कयो। इन प्रोग्राम में जयपुर जी पार्लियामेंट मेंबर मंजू शर्मा, प्रसार भारती जो अध्यक्ष प्रसून जोशी ऐं आकाशवाणी जो डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन समेत ॿिया म्यूज़िक ऑफिसर हाज़िर रहिया। इन मौके ते श्री वैष्णव स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ते ध्यान मर्कोज़ कंदे आकाशवाणी ऐं दूरदर्शन जे सरहदी इलाइक़नि में संचार बंदोबस्त खे मज़बूत करण लाइ आकाशवाणी ऐं दूरदर्शन तां सरकार जी कॉल बि ॾिना त रोशनी ॾिनी। हुन साहिब वक़्त सां गॾु बदिलाउ ते बि बल ॾिनो। हुन साहिब चयो त
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर

सरकार कुछ एथेनॉल मिलाने पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी माफ कर रहा है। माली विभाग एक नोटिफिकेशन जरिए 22, 25, 27, 30 सैकड़ों एथेनॉल मिलाने पेट्रोल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का मुकम्मल मंजूरी दे जो ऐलान कर रहा है। वजरा चार्ट इन चैन बारह पदार्थों के कस्बन पे एक्साइज ड्यूटी हाने जीरो होंगी। इनका मकसद 12 बजे एथेनॉल मिलाने प्रोग्राम को मजबूत करना है। भारत में ठहल एयरबस C295 जहाज गुजरात के वडोदरा का पंजी पैरी आजमाश उड़ान कामयाबी से मुकम्मल कई। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और भारत में ठहल पैरी एयरबस C295 के पैरी आजमाश उड़ान की सराह कई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू चयो तो एयरो स्पेस वन निर्माण में मुल्क के वधंदर सद के भी देखारे थो। उन साहब इन हासिला लाए एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम भारत हवाई फौज ए सभी इंजीनियरिंग टेक्नीशियन अहलकारन के वाधाई दिनी। अज महान क्रांतिकारी ए अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी जन्म जयंती आहे। इन साहिब जो जन्म अजोके डी यानी 11 जून 1897 में शाहजहांपुर में थियो हो। ही एक कवि ए साहित्यकार भी हो। ही भारत आजादी जी हलचल जी धारा जो मुख्य जंगी जोधो हो जैके 30 सालन जी उम्र में 19 दिसंबर 1947 में ब्रिटिश हुकूमत पारा फांसी दे चाड़े गए। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तंखा समय बिन मंत्री पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी जन्म जयंती पर मुख्य श्रद्धांजलि अर्पण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नामियारे फिल्म प्रोड्यूसर बर्तीराज के चालान से दुख जाहिर किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी चाहो तो बर्तीराज सिनेमा जगत की एक महान शख्सियत हो जिनों कारण तमिल सिनेमा के नए रूप मिले।

के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली पारा मिलियल शुभकामनाओं ए प्रधानमंत्री जी लाइ इन्हनि जा शुक्राना अदा कया आहिनि। विश्व जी सभ खां वॾी फुट

0: टूर्नामेंट 19 जुलाई ताईं अमेरिका, कैनेडा ऐं मैक्सिको में मुंतज़िम कई वेंदी। शुरूआती मैच में अॼु ग्रुप ए में मेज़बान मैक्सिको जो मुक़ाबलो ॾखण अफ्रीका सां थींदो। भारत जे वक़्त मुताबिक़ इहा मैच राति जो 12:30 खां शुरू थींदी। अचो त ॿुधूं हिकु रिपोर्ट। फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप है। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल है। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: बम्बई शेयर बाजार जो सेंसेक्स अज 151 पॉइंट गर्जी करे 73,833 ते बंद थियो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी पेट्रोलियम जो पॉइंट गर्जी 23,162 ते बंद थियो। आखिर में खास खास खबरों एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नई दिल्ली में नीति आयोग के 11 गवर्निंग काउंसिल की बैठक की सदारत कई। सूचना नशा मंत्री अश्विनी वैष्णव राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर जो मुहूर्त कई। सरकार कुछ एथेनॉल मिलाने पैटर्न पे एक्साइज ड्यूटी माफ कई। भारत में ठहल एयरबस C295 जहाज वडोदरा का पंजी पहली आजमाइशी उड़ान कामयाब नमूने मुकम्मल कई। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की अज रात मेक्सिको का शुरुआत। सिंधी समाज

0: नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र से युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी और मैं हूँ आपकी दोस्त जील पर आते। दोस्तों, आज हम माँ भारत पोर्टल और महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में बात करेंगे। माँ भारत पोर्टल भारत सरकार द्वारा युवाओं को राष्ट्र निर्माण, कौशल्य विकास और सामाजिक कार्य से जोड़ने के लिए शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण मंच है। वही राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के वीर क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उनका साहस, देशभक्ति और त्याग आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। आइए हम नए भारत पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय सेवा की भावनाओं को अपनाएं और राम प्रसाद बिस्मिल जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर देश के विकास में अपना योगदान दें। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हम एक गाना।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

0: दोस्तों, आज हम बात करेंगे माय भारत पोर्टल और युवाओं के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में। तो चलिए सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट चीफ ऑफिसर प्रीतिश जवेरी के साथ कीर्ति वैष्णव की बातचीत।
1: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अहमदाबाद के युववाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति वैष्णव। दोस्तों, आज के समय में हर युवा चाहता है कि उसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे अनुभव भी मिले जिससे वह अपने स्किल्स को बेहतर बना सके, समाज से जुड़ सके और अपने करियर के लिए भी खुद को तैयार कर सके। लेकिन हमेशा मन में सवाल होता है कि यह अवसर मिलेंगे कहाँ। ऐसे में भारत सरकार का माय भारत पोर्टल युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जहाँ उन्हें ऐसे कई अवसरों और लर्निंग प्रोग्राम से जुड़ने का मौका मिल सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज एक विशेष अतिथि मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्री प्रीतिश कुमार जवेरी जी, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं और फिलहाल अहमदाबाद और मेहसाणा जिलों को संभाल रहे हैं। प्रीतिश जी, युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन युववाणी।
1: जी सर, सबसे पहले बताइए सर कि माय भारत है क्या और इसे शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है।
2: जी, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। माय भारत एक ऐसी मुहिम है जो एक पोर्टल के माध्यम से शुरू हुई और 2023 में राष्ट्रीय एकीकरण दिवस जिसे हम मनाते हैं उसी के उपलक्ष्य में एक फिजिकल सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है ये, जिसे फिजिकल और डिजिटल दोनों ही मोड से आज हम जारी कर रहे हैं और देश के लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा यूथ, जो हमारे युवा है साथी, वो इस पोर्टल पे आज रजिस्टर्ड है। तो इस पोर्टल को बेसिकली युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए बनाया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य जो है भारत के युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है।
1: जी सर, अगर पहली बार कोई माय भारत पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाता है तो वहाँ उसे किस प्रकार के अवसर देखने को मिल सकते हैं।
2: जी, पोर्टल पर पंजीकरण करते ही युवाओं को एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड मिलता है कि जहाँ पे वो अपनी जो रुचि के अनुसार, कौशल के अनुसार एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जो कि युववाणी में आप भी हमारे साथ एक रेडियो प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन प्रोग्राम की एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो प्रोग्राम है उसमें आप भी जुड़ी है, ऐसी एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उसके साथ ही वॉलंटियर फॉर भारत करके एक हमारा डैशबोर्ड पे ऑप्शन रहता है, जिसमें जितने भी मेगा इवेंट्स होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जितने भी स्तर पर जो भी डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस या एनजीओस हमारे साथ जुड़े हुए हैं माय भारत पोर्टल पर, उनकी जो कोई भी एक्टिविटीज या इवेंट्स रहती है उसमें वो वॉलंटियर कर सकते हैं। उसके साथ बड़े पैमाने पर जितने भी मेंटरशिप प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी वो युवा जो अपने हैं प्रतिभाग कर सकते हैं। साथ में ही एक बहुत ही यूनिक फीचर एक हमारे पोर्टल का है, जो है सीवी बिल्डर, करिकुलम वीटे बिल्डर का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें युवा जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स और अपनी फर्दर स्किल्स और क्वालिफिकेशंस को अपलोड करते हैं तो वो अपना मिनिस्ट्री से अधिकृत अपना सीवी बिल्डर कर सकते हैं और प्रोफाइल को जैसे ही वो पब्लिक करते हैं तो जितनी भी इंटरेस्टेड या कंसर्न अथॉरिटीज रहती है या डिपार्टमेंट्स रहते हैं वो उनकी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको अपॉर्चुनिटीज भी दे सकते हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड भी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है।
1: जी सर, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि मैं खुद आज आकाशवाणी में सीख पा रही हूँ ईएलपी के माध्यम से। मैंने मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स कंप्लीट किया था तो मैं रेडियो में इंटर्नशिप तलाश रही थी, जब मुझे माय भारत पोर्टल ऑनलाइन मिला वहां मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और रेडियो प्रोडक्शन एंड प्रेजेंटेशन में अप्लाई किया, जहां मेरा सिलेक्शन हुआ और इस वजह से आज मैं डायरेक्टली आकाशवाणी अहमदाबाद से जुड़ पा रही हूं और यह एक्सपीरियंस कर पा रही हूं। सर, जैसा कि आपने वॉलंटियर फॉर भारत के बारे में बताया, अक्सर लोग समाज के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से की जाए। ऐसे में माय भारत अलग अलग गवर्नमेंट कैंपेन्स में डायरेक्टली वॉलंटियर करने का मौका देता है, तो सर आप इनके कुछ एग्जांपल्स दे पाएंगे माय भारत वॉलंटियर के।
2: जी बिल्कुल, अभी माय भारत में बहुत सारी, जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है और बहुत सारी इवेंट्स है, जैसे एक लास्ट ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय कक्षा का हमारा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हुआ, जिसमें आपको पता हो कि इस बार का जो बजट है उसमें उस विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के जो टॉप 10 ट्रैक्स थे उसमें पूरे राष्ट्र के जितने भी अलग अलग युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया था और माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपना वक्तव्य रजू किया था, तो उनके आइडियाज को एज इट इज इस बार के जो बजट है उसमें इंक्लूड किया गया है, इंक्लूजन हुआ है उनके आइडियाज का। तो ये दर्शाता है कि माय भारत पोर्टल की जितनी भी एक्टिविटीज है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें जुड़ने के बाद युवाओं के पास राष्ट्र स्तर का एक प्लेटफॉर्म तो रहता ही है पर उनकी बात या उनके संवादों को न सिर्फ सुना जाता है पर जो जितने भी देश की राष्ट्र की नीति निर्माण के कार्य है या अलग अलग कार्यक्रमों में युवाओं की प्रतिभागिता का अगर सवाल है तो उसमें इंक्लूजन का भी एक ऑप्शन रहता है और युवाओं की बात न सिर्फ सुनी जाती है उनको इम्प्लीमेंट करने का भी एक मौका मिलता है। तो जैसे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग हो गया, पिछले महीने हमने बजट क्वेस्ट का एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल पे एक क्विज हुआ और इस महीने भी विकसित भारत जो विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है जिसमें सीमावर्ती बॉर्डर एरियाज जो विलेजेस है हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख के वहां पे अलग अलग राज्यों के बच्चे जाकर खुद एक्सपीरियंस अपना गेन कर रहे हैं, वहां की जितनी भी रीत बात है उनकी संस्कृति है रहन सहन है उसके बारे में सीख रहे हैं और उससे जो भी गुड प्रैक्टिसेस है अपने राज्य की वहां पे ले जा रहे हैं और वहां की गुड प्रैक्टिसेस वापस दे आर गेटिंग बैक। तो इट इज सॉर्ट ऑफ आदान प्रदान म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इसी तरीके से मंत्रालय के बहुत अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिसमें युवा आदान प्रदान भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी हमारे डेज एंड वीक्स जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं उनको भी हम सेलिब्रेट करते हैं और जितने भी सरकारी या जन जागृति के कार्यक्रम रहते हैं उसकी अलग अलग इवेंट्स बनती है और उसमें बच्चे अच्छे से भाग लेकर अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: जी सर बिल्कुल। सर रेडियो के अलावा और किन क्षेत्रों में ईएलपी के माध्यम से अनुभव प्राप्त किया जा सकता है?
2: रेडियो के अलावा बहुत ही बड़े स्तर पर हमने हेल्थ ईएलपी यानी कि हॉस्पिटल्स में सेवा से सीखे एक कैंपेन हमने शुरू किया था, उसके साथ ही पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ डाक सेवक जितने भी बनते हैं उनके साथ भी हमने पोस्टल ईएलपी का ऑप्शन था। साइबर सिक्योरिटी हो गया, उसपे भी बच्चे हमारे जाके फर्स्ट हैंड अपॉर्चुनिटीज लेते हैं। वेरियस इंडस्ट्रीज जितना भी सीआईआई है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज उनके साथ भी हमारी मिनिस्ट्री के एमओयूज है तो इंडस्ट्रीज के साथ भी चल रहा है। अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है जिसमें काम के साथ साथ एक इंटर्नशिप का भी सेगमेंट है जिसमें सरकार

0: भी इंटर्नशिप स्कीम के तहत 9,000 रुपए ऑनोरेरियम भी देती है, तो वो सारी स्कीम्स जो है माय भारत पोर्टल पर अवेलेबल है और उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से बच्चे न सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान ले सकते हैं और या हैंड्स ऑन लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं कि जो उनको आने वाले भविष्य में जब भी वो एम्प्लॉयर होंगे किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी फील्ड में, वो उनकी काबिलियत को बढ़ाने में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है या उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने में ज्यादा कारगर साबित होगा। लेकिन वो एक्सपीरियंस के माध्यम से जो है अपने आप को ज्यादा सशक्त और आने वाली जितने भी चैलेंजेस है उसके लिए तैयार कर सकते।
1: किसी भी और इंटर्नशिप से यह ईएलपी किस प्रकार अलग है?
0: ईएलपी का जैसे हम बाइफर्केट करते हैं तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है कि आप, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि आपको पेन एंड पेपर लेके किसी बोर्ड के सामने बिठा दिया गया है और आपको कोई बोल रहा है और वन वे यू हैव टू लिसन, बट उसके अलावा ये आपको हैंड्स ऑन लर्निंग है। जैसे हम किसी कंपनी में इंटर्नशिप करते हैं, ये उसी प्रकार का एक प्रकार का प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस है कि जिसमें आप जिस भी क्षेत्र की एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसके साथ जाके आपको उस क्षेत्र में क्या काम करना होता है वो जमीनी स्तर पे उसको व्यावहारिक रूप पे उतारने का काम जो है इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से होता है। इससे दो फायदे होते हैं कि एक यूथ उस चीज को न सिर्फ अपने खुद के अनुभव से कर पाता है पर उससे जो सीख मिलती है, जो भी प्लस माइनस उसके होते हैं क्या उसको फर्दर उसको एज अ करियर ऑप्शन देखा जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में भी वो प्रॉपर एक डिसीजन लेने की स्थिति में रहता है कि वो इस एक्सपीरियंस के माध्यम से उस फील्ड में आगे जाना चाहता है कि नहीं, वो डिसीजन भी ले सकता है और उसके अनुभव के माध्यम से अपने आप को और भी काबिल बना सकता है।
1: यानी बच्चों को एक क्लैरिटी मिल सकती है कि आगे इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है।
0: राइट।
1: लोगों के मन में कई छोटे छोटे सवाल भी होते हैं, जैसे क्या इस प्रोग्राम में पैसे देने होंगे या क्या यह फुल टाइम होगा, ऐसी कोई छोटी जानकारी जो आप श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे?
0: जी, सबसे पहली बात तो यह है कि माय भारत पोर्टल पर, यह एक सरकारी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार का पोर्टल है और इस पे जो भी अवसर है वो पूरी तरह से निःशुल्क यानी कि फ्री है। और जहां तक फुल टाइम या पार्ट टाइम का प्रश्न है तो अवसर की प्रकृति पर यह निर्भर करता है कि जिस भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बच्चा जाना चाहता है तो उसमें फ्लेक्सीबिलिटी का ऑप्शन रहता है। कई एक्सपीरियंशियल लर्निंग कंटिन्यूअस नेचर की रहती है, जैसे आप अभी कर रहे हो युवावाणी तो उसमें आपको हर दिन आना होगा, जो प्रोडक्शन की प्रेजेंटेशन की हर बारीकियों को जानना होगा, तो वो आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेंगे, डेली आएंगे तभी उस चीजों को एक एज अ कंटिन्यूटी के बेस पर कर सकते हैं। लेकिन कई जैसे हमारी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है तो उनके स्टोर पे भी हमारे बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से जुड़ते हैं तो वहां पर डेली जाना जरूरी नहीं रहता है, तो उस तरह मैनर में कि अपनी सहूलियत के अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी वो अपना चयन कर सकते हैं।
1: सर, आपके अनुसार यह ईएलपी युवाओं को करियर की दृष्टि से आगे किस प्रकार और मदद कर सकता है?
0: हमारा यह मानना है कि ईएलपी के माध्यम से युवा जो है जॉब सीकर्स से बदलकर जॉब क्रिएटर्स या जॉब गिवर्स बन सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक अनुभव से उनमें समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है, टीम वर्क में कैसे काम किया जा सकता है, लीडरशिप को कैसे निखारा जा सकता है और अपने कौशल को विकसित करते हुए वो अपने करियर के पोर्टफोलियो को कैसे और मजबूत बना सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों पर काम होता है। तो उन्हें वर्कप्लेस के लिए आगे जब भी वो एम्प्लॉय हो गए तो उनके वर्कप्लेस में उनकी कैसी तैयारी होगी उसके लिए यह तैयार भी करता है और उसके साक्षात्कार जो भी हमने इंटरव्यूज होते हैं या पेशेवर प्रोफेशनल लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करना है तो उनको एक प्रॉपर गाइड मिलती है दैट गोज विद देयर ओन एक्सपीरियंस।
1: जी सर, पिछले वर्षों में सरकार ने युवाओं के प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलकूद के क्षेत्र में भी, जैसे खेलो इंडिया स्कीम। सर, ऐसे कोई अन्य सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बताइए।
0: जी बिल्कुल, अगर भारत सरकार के पिछले 12 वर्षों की जो कार्यप्रणाली रही है उसकी बात करें तो हम बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव और ऐसी बहुत सारी नीतियां हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर न सिर्फ युवाओं के जीवन में या जीवन स्तर में बढ़ोतरी की है लेकिन अवसरों की जो असमानता थी उसको भी काफी हद तक उसको काटने का प्रयास किया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से पिछड़े ऐसे वर्ग के जिनके पास कोई भी स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए न कोई फंडिंग था, न कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, न कोई एक प्रॉपर ऑफिशियल गाइडलाइंस थी, तो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत सारे पिछड़े वर्ग के बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो भी आज जमीनी स्तर पर उठकर बहुत अच्छे स्तर पर अपना कार्य कर पा रहे हैं। ऐसे ही हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है कि जिसमें कौशल पे ज्यादा फोकस करके अपने अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के माध्यम से अपने आप को कैसे इस AI और मशीन लर्निंग के युग में कि जिसमें हम वेव 5-6 की बात कर रहे हैं तो उसमें वो कैसे अपने आप को और ज्यादा प्रासंगिक यानी कि रेलेवेंट बना सकता है और अपने आप को ज्यादा और एम्प्लॉयबल उनकी स्किल्स बना सकता है। तो पीएम कौशल विकास योजना हो गई या अपना डिजिटल इंडिया जैसे है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं कि जिसके माध्यम से हमारा राष्ट्र न सिर्फ डेवलपिंग है बट इट इज एस्पिरेशनल नेशन की श्रेणी में अभी हम अपने आप को देखते हैं। और जैसा ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि

0: भारत को 2047 में विकसित बनाना है, लेकिन पिछले 12 वर्षों से इन्हीं विषयों पे ज्यादा कार्य हो रहा है और बहुत सारी ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवा न सिर्फ अपने आप को आगे ले जाने की स्थिति में है, बट मुझे लगता है कि माय भारत पोर्टल एक मील का पत्थर साबित होगा उसमें कि जिसमें जुड़कर युवा न सिर्फ अपने आप को और बेहतर कर सकता है लेकिन आने वाले जो फ्यूचर की जो चैलेंजेस है उसके लिए तैयार भी कर सकता है।
1: अंत में सर, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा जो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं और अपने करियर की दिशा तलाश रहे हैं?
0: हमारा संदेश यही है युवाओं के लिए कि अवसर तो आपके चारों तरफ है, बस उसे पहचानने की और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। माय भारत एक ऐसा ब्रिज या ऐसा पुल है कि आगे आने वाले आपके जो करियर के वर्ष है उसमें यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव साबित होने वाला है, क्योंकि मंत्रालय ने या भारत सरकार ने इसे एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह देखा है कि युवाओं की सभी प्रकार की जो नीड्स है, यूथफुल लाइफ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जितनी भी चैलेंजेस के जिसका समाधान कैसे हो, एक व्यवहारिक या ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से कैसे एक ऑफिशियल न्यूज या ऑफिशियल अपडेट उनको मिल पाए, तो उसके लिए माय भारत पोर्टल पर जरूर उनको जुड़ना चाहिए और अपने आप को अपडेटेड रखना चाहिए कि अपने क्षेत्र में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, अपने जिले में या अपने राज्य में जो भी अपॉर्चुनिटीज है या नेशनल लेवल की जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसमें जरूर बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इससे न केवल उनका जो पोर्टफोलियो है या उनका जो करिकुलम वीटे है या अपनी क्वालिफिकेशन उनको ये बढ़ा सकेंगे, बट अपने आप को और भी ज्यादा, जैसे मैंने बात की कि एम्प्लॉयबल या अपने आप को और अपस्किल्ड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए माय भारत पोर्टल पर जुड़ने से मुझे लगता है कि युवाओं की सभी व्यवहारिक जो समस्या है उसका समाधान वो ढूंढ सकते हैं। उसी के साथ मैं एक ऐसे एक कोट के साथ बच्चों को इस वाणी को अपनी विराम देना चाहूंगा कि जिसने मुझे अपने यूथफुल ईयर्स में या जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था या किसी भी अपने करियर को आगे ले जाने के लिए कई ऑप्शंस ढूंढ रहा था, जिसने गाइड किया है, काफी पॉपुलर है, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतेश जी आप यहाँ आए। दोस्तों, आज हमने जाना कि माय भारत पोर्टल और ईएलपी किस तरह युवाओं को नए अवसर और अनुभव प्राप्त करने का मौका दे रहा है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहते हैं तो माय भारत प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िए। इसी के साथ मुझे कीर्ति वैष्णव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
2: दोस्तों, अभी हमने सुना प्रीति जवेरी के साथ कीर्ति वैष्णव की बातचीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लेते एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक।

दोस्तों आज तारीख है 11 जून। आज है भारत के महान क्रांतिकारी अद्भुत कवि और आकुरी क्रांति के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जन्म जयंती। वही बिस्मिल जिनका नाम आते ही हमारे जहन में एक नारा एक कविता गूंजने लगती है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है सर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों अक्सर इतिहास में लोग या तो हाथों में बंदूक थमाते थे या फिर कलम, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे योद्धा थे जिनके एक हाथ में पिस्तौल थी और एक हाथ में कलम। 11 जून 1897 के उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर में जन्मे बिस्मिल जी के जितने बड़े स्वतंत्रता सेनानी उतने ही बेमिसाल लेखक और कवि भी थे। बिस्मिल, राम और अज्ञान उपनाम से लिखी उनकी कविताएं उस दौर में सोते हुए हिंदुस्तान को भी जगा देती थी। दोस्तों बिस्मिल की शुरुआत में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन जब साल 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद आंदोलन को अचानक वापस से ले गया तो युवाओं का महाभंग हो गया। बिस्मिल जी को भी लगा कि बिना किसी आक्रमण रणनीति के यह गोरे सरकार हमारा भारत छोड़ने नहीं वाली। इसी वैचारिक मोड़ के बाद उन्होंने युवाओं में एक नया जोश फूकने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे जाबाज इसी संगठन के देन थे। वे सिर्फ खुद नहीं लड़ रहे थे बल्कि उन्होंने देश के युवाओं को जोड़ने के लिए मातृ देवी नाम की एक गुप्त संस्था भी बनाई थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियारों की जरूरत थी, हथियारों के लिए पैसे की। इसी कमी को पूरा करने के लिए 9 अगस्त 1925 के बिस्मिल के नेतृत्व में पाकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया गया। सरकारी खजाना लूटा गया जिससे अंग्रेजों को बता दिया कि अब भारत की युवा चुप नहीं बैठेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि क्रांतिकारी सिर्फ बंदूक चलाना जानते हैं, लेकिन बिस्मिल जी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कई किताबों का शानदार अनुवाद किया और जेल में बैठकर अपनी पूरी आत्मकथा लिख डाली। लेकिन दोस्तों आज इस युवाणी के माध्यम से मैं देश के हर एक नागरिक को एक जरूरी बात पहुँचाना चाहती हूँ। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान की दोस्ती भारत के इतिहास की सबसे खूबसूरत मिसाल है। एक हिंदू एक मुसलमान, दोनों के रास्ते अलग हो सकते लेकिन मंजिल एक ही थी, देश की आजादी। दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और हंसते हंसते

0: के लिए अपनी जान दे दी। जब बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई गई, तब उनकी माँ मायमती जी उनसे मिलने जेल आई। अपनी माँ को देखकर बिस्मिल जी की आंखों से आंसू आ गए। तब उनकी माँ ने कहा, मुझे लगा था मेरा बेटा बहादुर है, लेकिन तुम तो मौत से डर कर रोने लगे हो। इस पर बिस्मिल जी ने मुस्कुरा कर कहा था, माँ ये आंसू मौत के डर के नहीं है, बल्कि इस बात के है कि अब मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाऊंगा। ऐसी महान माँ और ऐसे महान सपूत की यह दास्तां सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर मात्र 30 साल की उम्र में 19 दिसंबर 1927 के गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई। फांसी के फंदे को चूमने से पहले उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूँ। आज बिस्मिल जी की जयंती पर हम खुद को एक सवाल करते हैं। आज हमें देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या हम ईमानदारी से देश के लिए जी रहे हैं? क्या हम आपस में लड़ना छोड़कर एक सशक्त और एकजुट भारत बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं? बिस्मिल जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब मिलकर एक जागरूक, शिक्षित और अखंड समाज का निर्माण करें। आइए आज रेडियो के इस मंच से हम सब मिलकर उस महान आत्मा को नमस्ते करते हैं और पूरे दिल से कहते हैं, अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे। दोस्तों, अंत में हम कह सकते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी का जीवन हमें देशभक्ति, साहस और त्याग की प्रेरणा देता है। उनके आदर्श आज भी युवाओं के लिए मार्गदर्शक है। वही नए भारत पोर्टल युवाओं को राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा की सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान करता है। हम बिस्मिल जी के विचारों से प्रेरणा लेकर नए भारत पोर्टल जैसी पहलों का लाभ उठाना चाहिए। इससे हम अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। दोस्तों, बात करते करते वक्त कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। अब वक्त है विदा लेने का।
1: अभी आप सुन रहे थे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युववाणी, जिसका प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया है।

नसकी मैसेज के बेटे ब्रिज। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेक्टरों से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी विमान के शिलास बंदरगाह

में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमके मारेगक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है

लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़े अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि यह एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के

0: क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने ईशान रानी बरुआ को और तन्वी ने मांजिका मंसूर को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भूज प्रस्तुत छे आज ना मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री कहू खेडूतों नो कल्याण सरकार नी टोचनी प्राथमिकताओं में एक। सरकारे इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ना केटलाक प्रकारों पर एक्साइज ड्यूटी माफ करी। केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाले ओमान में भारतीय जहाज पर थयेला मिसाइल हुमला में त्रणे भारतीय नाविकों मृत्यु की पुष्टि करी। विश्वनी सौथी मोटी फूटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप नो आज रात्र 12:30 वाजे प्रारंभ। देश ना अवकाश क्षेत्र ने प्रोत्साहन आपवा माटे इन स्पेस केंद्र सरकार ना सहयोग थी गांधीनगर नी खोरज जीआईडीसी खाते अत्याधुनिक अवकाश उत्पादन पार्क विकसावशे। पोलिस कमिश्नर थी लईने पीआई सुधी ना अधिकारियों ने दररोज 2 कलाक फरजियात नागरिकों ने सांभळवा राज्यना पोलिस वडा जीएस मलिके आदेश कर्यो। राज्यमां 1 महीनानी राज्यव्यापी हेलमेट झुंबेश अंतर्गत हेलमेट नियम भंग करनार 5,123 सरकारी अधिकारी कर्मचारी पासेथी 16,58,000 रूपियानो दंड वसूलायो। भारतमां बनेल प्रथम एरबस C-295 गुजरातना वडोदराथी तेनी प्रथम परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूर्ण करी। खेड़ा खाते जिला कक्षाना तेजस्वी विद्यार्थियों सम्मान समारोह आयोजन करायुं। 2025-26 धोरण 10 और 12 ने बोर्ड की परीक्षा में A1 ग्रेड मेलवनार 867 छात्र छात्राओं तमज 100% परिणाम प्राप्त करनारी 270 जेटली शालाओं ने सम्मानित कराई। शिक्षण राज्यमंत्री त्रिकमभाई छांगाए भूज तालुकाना कोटिया चक्कर गाम की मुलाकात लईने प्रबुद्ध नागरिकों साथे संवाद कर्यो। शालाओं शुरू थता ज भूज आरटीओ द्वारा स्कूल वाहनों नु चेकिंग हाथ धरायुं। 35 वाहनों ने 1.26 लाख ना मेमो अपाया। मुख्य समाचार पूरा थया।

0: من سندریتی پی کے فون کر رہی تھی شام اور شیا گوشال میں سے گیا سونم کرکرے میں سے لکھا اور شام تنو موہت رانی سے سنگیت بدھ کیا سنتے ہیں یہ سندیش
1: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप के सुपुत्र मित्र कवि साझा कर रहे हैं अपनी पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़े कुछ यादें।
0: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे तो भी सफेद के सिवा उन्होंने पहनाने एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ

परिवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कथा ने साहस की, देश के लिए कुर्बान हो जाने

सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों जावेद अख्तर के बोलों के साथ अनु मलिक के संगीत के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा।

आप सुन रहे थे सुदेश प्रियंका का गीत ए आर रहमान की आवाज में जावेद अख्तर के पूर्व और ए आर रहमान के संगीत के साथ। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत में उड़ान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्रीय शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों के दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: जिस

0: टॉपिक फॉर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग।
1: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और
0: वर्किंग लाइफ टू ओल्ड एज।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: से रखी जाती है। हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। FCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या FCAT@edcil.co.in पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटडेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रधान राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
1: हम अपने नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्रीय जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेक्टेबलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार है। मस्कत स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिडी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: ये द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
3: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
4: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों को यह पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा पहली पांच है जो हमको 5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत सुखी संख्या से सब जी रहे हैं।
0: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और

0: औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: परीक्षा मित्र को हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी के परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारे जी और टीबी की हाल।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटी टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी

0: मैच होने हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही है। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसूर को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तक के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तरफ पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

छायादीप, छायादीप के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत की तरानी रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नजारे ये चाहेंगे सितारे उसी

वो शाम का भैया वो रात का इंतजार गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत वो शोखी वो करामत बातों ही बातों में क्या बात हो गई पलकी क्या झुकी किससे हजरत हो गई।

मेरे भाभी से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उन पर ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा दे, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं। इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशिया, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूँ तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजमी का

0: सभी प्रभु के जीवन से जुड़े कुछ अहम थे,
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धति अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।

0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए द्विपक्षीय समझौता किया। यह समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
1: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने यह निर्णय किया 50-50% तक करकर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एंटी सटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एंटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि यह उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और

0: आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और पंगी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिंधु ने ईशा रानी वर्मा को और पंगी ने मालविका बंसोर को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Prime Minister Narendra Modi has said

0: साल बात होती है, 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं, एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का दायरा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश है, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको माना भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आपका।
0: अब मैं आपको माना जी तो नहीं कहूँ, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूँ। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
1: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी

0: से शुरुआत की है। मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो दो साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनकी कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर है आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ा हुआ है मोदी जी के साथ?
1: भारतीय

0: प्रेरित किया है और सबके लिए अपना पन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मी और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि एम्स के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, ये वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। तब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उन्होंने फोन करके कहा न चुनाव की बात, मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपना बन है
1: शिवराज जी। क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी सिद्ध

को हो, मकसद वास्ते देश को मुक्त करना हो, कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की भार बढ़ेगी, कौन कल्पना करता था। अगर मैं बोलाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़

0: से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम है कि समय कम पड़ता है, तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: सुनील जी, आप इतना अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ हो रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना एक साल के लिए
0: चलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन सा ज्ञान शक्ति है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और

0: आपने जो बात कर पानी के पेपर लीक होते थे, तो ये नेगेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा
1: अंतर नहीं है कि पहले कुछ नहीं होता था, कठोर कार्रवाई हुई है और जवाब भी गलत मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
0: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा,
1: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय न खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
0: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नेगेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
1: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
0: नहीं तो

0: नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, कौन कितना समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 380 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी, कई

मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महा

हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है और जनता यह सच जानती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी

उपलब्ध न होते तो क्या होता, वो भी वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, अगर हमारे देशवासियों को नहीं लगी दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली थाली, दीपक जलाओ, अब एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए, जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए, जिस ढंग के कदम उठे कोई कल्पना कर पाएगा। और कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता

संकल्प लिया। राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए 3 गुना ताकत से काम कर रहे प्रधानमंत्री कर रहे, हम पीछे कैसे रहे। उन्होंने इस बार कहा

0: डिजाइन कर सकते हैं, कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: और भी कारपूल करते हैं और जाते हैं तो
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट के और दूसरे मंत्री जा रहे तो हम साथ बैठ के जाते हैं, कार को हम दूसरी कार ले जाए, जब पिछली बार बैठक में तीन मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खतरा बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान न पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: चंद्रा जी, एआई नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं।
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो तीन बड़े लक्ष्य हमारे, एक देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है, दूसरा

0: कि अगर आप बात करेंगे
1: जो अभी हम बात कर रहे हैं
0: अनियमों की जो हम बात करें, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया,

के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है।

0: भूवन है, भारत के भगवान का वरदान है, उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, जिसका इंडिया से मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए जो विश्व हित की भी सोचता हो, ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री है, नेता है या सॉफ्ट लीडर है, क्या है?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि बहुत अच्छा हुआ और देश उसको बहुत पसंद करता है, हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा कर मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ।

दरअसल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थी रीना पाराशर।

0: Szólj, se Maki Miklós bácsi.
1: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी। और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है। और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो आज मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उस पर पुनर्जागरण हो रहा है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
2: मैंने प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो ये है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगो युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, और इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारे युगो युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाए और हमारे जो नागरिक है, खासकर जो हमारे युवा वर्ग है, उनके समक्ष ला पाए, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए, बहुत सारे जो हमने

से भारत की राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की, जिसमें हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम मध्ययुगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर है। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो हमारी पांडुलिपियां है, जो विभिन्न विषयों पर है, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पर है, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे

0: भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वामीनाथन पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहाँ किसी भी देश का हम कहते हैं ना कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होता है उस देश के युवा होते हैं। और जैसे कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने भी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारी इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरे विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय बाहर लेके जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको

ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है जिसमें जो बुद्धिस्ट

0: थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पर शिक्षण का कार्य होता है, उसको रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह ये नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जन जी की अगर मैं बात करूँ तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
0: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे और वायसराय थे, उनके नाम पर बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे फोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, तो वहां पे द्वीप थे और नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल है जिनमें कॉलोनियल लेगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है, जो पुरातत्व स्थल है, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विस्टर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है और वहाँ पे हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारा यूथ है, हमारे मेन पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लूथल में एक बहुत बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लूथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरिटाइम सिस्टम था, वेयर हाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसका महत्व और उसकी ज्ञान की ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे न केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
1: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपने ही

0: रहे हैं संस्कृति मंत्रालय के सचिव, बल्कि जब आप विदेशों में जाते हैं कई कार्यक्रम करते हैं तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए मिक्स भावना होती है, जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम में रखी हुई है और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत को लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। क्योंकि एक शुरुआत है, मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, उसमें न केवल भारत का कल्चर मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं, जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उसको गर्व होगा। और मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूँ, और आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है, तो जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा

0: हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था, महिलाओं की ये सामने आ रहा है वही संस्कृति, आज हमारे दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली, जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, उसका मतलब ये था जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं, तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं, ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और आज जब हम कह रहे हैं पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और उसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं, तो पूरा जो जो प्रक्रिया है पूरा सेटअप है वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे, उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: हम बात कर रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय।